तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं। जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हों का कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी के सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नर्क कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसल तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है। तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हा दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कैन दे ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हां, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसी ना किसी थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ। और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी, केड़ी

0: दफा वाहिगुरु शब्द कहने दे वेले पूरी अलर्टनेस दे नाल, पूरी अवेयरनेस दे नाल वाहिगुरु प्रेम दे नाल लखना है। और जिस चीज नू वाहिगुरु क्या है वो है साडे अंदर साडी आत्मा जोत जिंदगी जीवन दी रौं जो सबना दे विच है उस वस्तु दा नाम है वाहिगुरु और उसनू अपने ख्याल च लैके आना है। आफ्टर ऑल असी किसे वस्तु नू किसे सबस्टेंस नू किसे किसे ही होंद नू ही वाहिगुरु कह रहे हैं ना, उस होंद नू भी अपने मन च लियाना है। और बिल्कुल अवेयरनेस दे नाल ख्याल दे नाल ध्यान दे नाल बेसुरती दे नाल वाहिगुरु नहीं आखना। तो इस तरह कीता होया जाप जो है अगर हर रोजाना असी अपना एक टाइम सेट कर लिए कि एक घंटा करना है, अगर असी साल भर कर जावांगे तो साल भर दे विच इस तरह कीता होया अभ्यास सानू आत्मक मंजिलां सुरती दे मंजिलां दे विच किते दा किते लै जाए। तो कि असी एक साल भी इस विद्या दे वास्ते इस प्राप्ति दे वास्ते डेडिकेट नहीं कर सकते, ये साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई नानक के कर केवल नाम सिर्फ नाम ही नाम है। फिर असी कदों जपांगे? नाम तो बिना महाराज कहते नरक कहीं ना लेके। सो ये जो विचार आप जी के सामने रखे हैं इन्हों आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स के विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। तीन लैवल्स हैं जो मैं आप जी की सेवा च रख चुका हाँ, काया नू साधना है और मन दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते सवार रहना है। तीसरी गल सुरती दा जाग लगाना है, दुद्ध वर्गे कर्म करने हैं निर्मल पवित्र, इतने अच्छे कर्म करने हैं कि उन्होंने कंपेयर कीता जा सके दुद्ध वर्ग, और फिर उस दुद्ध नू सुरती दा जाग लगाना है। सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा अभ्यास करना है। इशनान करन वेले सुरती किते है, बिस्तरे उते लेटे पए हो सुरती किते है, खाना खा रहे हो सुरती किते है, कार चला रहे हो सुरती किते है, सैर कर रहे हो सुरती किते है। जिसने सुरती दा अभ्यास करना शुरू करता उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है। उसके कोई फिर जो है ओ टाइम अजिहा नहीं कि हुण ना कीता जाए, दिस इज ऑन गोइंग थिंग। सुरती दा अभ्यास हर वेले करना है। सुरती दा अभ्यास करद्या करद्या करद्या करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि ओही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उससे ही सुरती दे विच ओ वाहिगुरु जी दी जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन दी जो विचारां दी लड़ी आज इत्थे संपूर्ण हुंदी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उसनू आज इत्थे महाराज जी दी बख्शिश दे नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं। और इन्हां विचारां नू आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती दी साधना करो और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करता है जा रात नू सूटेबल है जा दोपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे, उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द दा अभ्यास जो है वो नितनेम दे नाल करना है और बहुत ध्यान दे नाल जागरूकता दे नाल करना है। और उस दे नाल नाल अगर हो सके ते गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए, जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हन ते गुटकियां आप तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त किसी दायरे दे विच रखना है, तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा उसका अंदर भी शुद्ध हुंदा जाएगा, शरीर भी उसका मंदिर बन जाएगा, शरीर उसका रब की कामणी बन जाएगा, शरीर उसका सरोवर बन जाएगा और उस सरोवर दे विच आत्मक फुल खिलणगे और उसकी जो जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। फूल चुक दी खेवा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र वचन, जो कि बहुत ही अगम्मी रबी विचार है, सानू महाराज जी के शब्द द्वारा सुनन दा एक मौका प्राप्त होया। जो आप जी की सेवा च गुरु महाराज जी का महान सिख्या भरिया उपदेश दास ने अर्ज करना है, उसके वास्ते मेरी प्रबंधक सज्जना नूं पहले ही बेनती है कि जो पिछों बच्चों की आवाज आती है उसका सही इंतजाम करन, ताकि उस थॉट प्रोसैस के विच जुड़ी हुई संगत नूं किसी भी किस्म की कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। आप जी ने इस शब्द की जो थीमैटिक लाइन है वो बार बार सुनी है, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठिन। सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सानू साडे जीवन दे विच्चों कोई अजेही चीज छोड़ देण नू आख रहे हन जो कि सानू सब तो ज्यादा प्यारी है। कोई अजेही चीज छोड़न नू आख रहे हन जो कि साडी जिंदगी दे विच तमाम फिक्कापन लैके आंदी है, दुख लैके आंदी है, सारी जिंदगी दे विच जो जहर घोलदी है उसनू छोड़न नू कह रहे हैं। पर जिस वस्तु नू महाराज जी छोड़न नू कह रहे हैं उही वस्तु है जो सिख बहुत मुश्किल दे नाल छोड़ सकता है। उही वस्तु जिस चीज नू महाराज कह रहे हैं ना छोड़ दो, वही साडे लिए छोड़नी सब तो ज्यादा कठिन। गुरुदेव जी आप ही इस गल नू जानते हैं, इस करके वो कहते हैं, पहला सुजेशन है कि मन की मत त्यागो हर जन, पर नाल ही नाल क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं दिस इज नॉट वेरी ईजी थिंग टू डू, दिस इज नॉट सो सिंपल थिंग टू डू, यह बात कठैनी, ये बात बहुत कठिन है। क्योंकि अगर असी अपने मन की मत ही छड़ दिती तो फिर साढ़े पास रह की गया, कुछ भी ना रह गया। हरेक इंसान की अपनी मत, हरेक इंसान की अपनी मत है, और क्योंकि हरेक की मत अलग अलग होण करके हरेक इंसान फिर अलग अलग बोलता है, हरेक इंसान अलग अलग सोचता है, हरेक इंसान अलग अलग कर्म करता है, जिस करके कई दफा साडे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो जाते हैं। तो मत जो अलग अलग, अगर साडी सबना दी मत एक हो जाए तो फिर साडे कोई भी डिफरेंसेस ना रह जाए,
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਿਆਗਣੀ, ਛੋੜਨੀ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਦਾ? ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੋ ਮਚ ਕਨਵਿੰਸਡ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ

એટલે મતલબ મતલબી ઓપન ઓકો મતલબી ઓપન ગુરુ મહારાજ જી આખજન મન કી મત ત્યાગો હરજન એહા વાત કઠેન ગુરુ બાબાજી દે વિચ ગુરુ ગ્રંથ સાહેબજી વિચ દાસ ને જો પઢ્યા કિતે ભી પૈસા ત્યાગણા ઉહના ને કઠન નહીં લિખ્યા કિતે નહીં લિખ્યા કે પૈસા ત્યાગણા કઠન ત્યાગ્યા જા સકતા હૈ દાન કીતા જા સકતા હૈ શરીર ત્યાગણા ભી કઠન નહીં હૈ એ ભી કીતા જા સકતા હૈ अपनी मत त्यागनी जड़ी है वो महाराज जी ने अपने लफ्जां च अपने शब्दां च अपने हत्था नाल आप लिखे है कि ए त्यागनी बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर मत त्याग दिती तो समझ लो एक किस्म दी अपनी होंद ही त्याग दिती मत त्यागन दा भाव के मैनु कुछ नहीं पता मेरी कोई राय नहीं मेरी कोई ओपीनियन नहीं मेरी कोई व्यू पॉइंट नहीं मेरा कोई भी नजरिया नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता मत त्यागण का मतलब भी मेरे पास मत है ही नहीं आओ थोड़े जे प्रमाण सुनो जिथे गुरु महाराज जी आखते हैं कि हरेक इंसान दे पास आपो अपनी मत है और आपो अपनी मत दे विच में बोली जाता है उसने कदे ए अपनी जिंदगी च क्वेश्चन नहीं कीता सवाल नहीं कीता भी मेरे पास मत है भी या नहीं आओ असि सारे जितने बैठे हैं मैं आप सबना में सवाल रेज करता हूं कि असि कदे अपने आप से यह सवाल कीता कि की मेरे पास मत है भी या नहीं नहीं ए ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड थिंग है कि मेरे पास मत है और इनफ है कोई काट नहीं है उसकी ये गल दुरुस्त है या नहीं सत्संगत असी कदे भी अपने आप से कदे डाउट भी नहीं किया कि जो मेरी मत है ओह सही भी है या नहीं मूर्ख तो मूर्ख इंसान नू भी एक कदे शक नहीं हुंदी अपने आप उत्ते कि मेरे पास मत नहीं है उस नाल भी गल करके देख लो उस पास भी काफी भंडारा मत दा होएगा इस उत्ते गुरु महाराज जी की जो ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सिखी शुरू कितों हुंदी है सिखी आरंभ हुंदी है सिखी सिख्या गुरु विचार गुरु की विचार तो गुरु की मत तो सिखी आरंभ हुंदी है ते अपनी मत ते सिखी जाके खत्म हो जाती है जिथे अपनी मत है उथे सिखी खत्म हो जाती है गुरु सिख का रिश्ता खत्म हो जाता है जिथे मत गुरु वालों आती है उथे सिख का जन्म हुंदा है इस करके अज का पहला कीर्तन जो फंडामेंटल चीज है जो बुनियादी चीज है वो गुरु साहिबान की मत है उस उत्ते कीर्तन आरंभ किया जा रहा है फिर अगां चल के असी अगले कीर्तन सुनांगे कि मत की है जिस चीज नूं असी मत समझते हाँ वह की चीज है तो यह विचार ज्यों ज्यों कीर्तन अगां तो अगां वधणगे गहरियां विचार जो महाराज की बख्शिश के नाल असी करते जावांगे गुरु साहिबान की ऑब्जर्वेशन यह है कहते हैं सबको बोले अपन पाणे समझण वाली गल है सबको बोले अपन पाणे हर बंदा ओही ओही बोलता है जो उसनू पाउंदा है जो उसनू अच्छा लगता है

0: पितर जो राम बरसत है सचो तहि पहचानो।
1: छोड़ो दुनिया
0: तो प्रभात शब्द आये छोड़ो दुनी परिता छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यारा।

0: जलतजिया पूरिया लो आकार अखे सो तू जाने नाम तेरी सार
1: नानक भगता पुख शलान सच नाम आदार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

0: हर हर गुर गुर करता रे,
1: हर जियो नाम परियो रामदास,
0: हर जियो नाम परियो रामदास,
1: हर जियो नाम परियो राम
0: दीन दयाल कृपाल सुख सागर
2: सर्व
0: सर्व कथा
3: पर पूरी रे,
0: एकत सुनत सदा है संगे,
3: एकत सुनत सदा है संगे,
0: मूर्ख जाने दूरी ने
3: हर बे अंत हो मित कर बरनो,
0: क्या जानो
3: हो कैसो रे,
0: क्या जानो
3: हो कैसो रे।

0: मद जो बास बसत है मुकुरमा है जैसे छाय जैसे गी हर बसे नरंतर कटकी फोटो पाई बाहर भीतर एक दान गुर ज्ञान बताई जन नानक गुर आपा जी ने
1: जन नानक गुर आपा जी ने
0: मिटे न पलम की काई मैं मूर्ख जान

0: हर पितृ की पार्श्व हो, कहूं पहल विपस्त विशेष करती, कहूं देश बाकी
1: देववाणी, कहूं राज विद्या।

जे असी उस सवाल नू बदली करना चाहिए ते असी बदली करन दे समर्थ नहीं है, असी नहीं कर सकते। पत्थर दा सुभाव जन्मजात तो कठोरता है।

एकदम सारा जन्म तो टूट गया है, जा रहे हैं जैसे ठीक नहीं थी बस से सफर कर रहे हैं। गर्मी के दिन भी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट ने रात देखा है, देखे बड़ा सुंदर नौजवान है। मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई है, हर साल मैंने खिलाई करता है। आज से कह लगा भाई जी ये अखा खराब नहीं हुई, मैं क्या तेरा ने क्यों लाई है। कह लगा न्यू लाइफ ही है मैंने कहा खुश रही। मैं क्या भावे अखा की लाइट मुक जाए पर न्यू लाइफ का जरूर जारी नहीं है इनकी कहने पर सारी अखा डॉक्टर को लग गई। बाबा जी कहते सारी से तरह तंदुर मारू के व्यापार भी एनक लग गई। इस मालक ने व्यापार भी एनक लग गई, कोई पुत्र भी एनक लगा वास्ते आ जाता, कोई माया भी है सरदा जी माया चाहिए मिल जाती कोई वही चीज नहीं। इतना पता चलता है फिर में चीज चीज को राज पार ब्रह्म गरीब कोई मान मटियाई भी एन कलवाण वास्ते आ जाता है, कोई मकान भी एन कलवाण वास्ते आ जाता है। पर बाबा जी कह रहे सन कोई गुरु नानक में दर्शन करने वास्ते एन कलवाण वास्ते आ जाता है। पर बाबा सिंह जी महाराज कह रहे सन लोग दुनियावी एन कलवाण वास्ते सारी दुनिया आती है पर सन गुरु नानक में दर्शन करने वाली एम कोई निर्भर कोई फिर आके अरदास करे पाओ से खाली।

करके सारे होने से बख्शिश, सारे धर्म तुम्हारी भाई बख्श, तुम्हारी रात है मेरा वाली रात है, और मेरी सास प्यार ना सारी धर्म का राज।

कितना प्यार है सहयोगा देवी अज कल पश्चाताप रो अपनी गलती तसवर करके रो रहा है राय जी हर जाम वो हथे जिना अखा नाल नानक में चपेड़ा मारना रे मैं तो माया का कीड़ा हां मेरी अदाल सुन के नहीं आएगा फिर तुफान कभी अखा दिया छिपिया प्यार के सुचे मोती गुजर लग गए फिर कहें की

हमारी जय बा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आना हर तुम बड अगम अथाह।

हमरी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कहिया तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कहिया जेबा एक तू समरथ बड़ा मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समरथ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

वटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा, वटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता। कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान। तेरो थान, तेरा थान सुहारा रूप सुहारा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, भरत सुहावे ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सदगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले न कोई, जिस पापी को मिले न कोई, शरण आवे।

जन नानक को हर बंस ले हो, जन नानक को हर बंस। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अखाहा, हम क्यों कर जबे आने हर तुम मत अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर टुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, तिन तिन सब हो पर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मूं करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप ते दीप जगायो, जग वरदान सवा ओह आवा, रामदास तब गुरु दिजे पूर्व देवड़ा, इसदी वस्त तिसे घर आवे, बैठा सोधी पादशाह, रामदास सतगुरु। जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंतो, शिव मन कहना तजात कबिलाश को, जांको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी निवाजी साध सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन्हों दो सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असीं दीपचंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या चंद्र दाने दाने बोमाने चाल जागृति दे ताल जागृति कौन करना जागृति दे ताल जागृति कौन करना जागृति जागृति जागृति

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले करनी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्कत नानक।

आदिगुरुये नमः जुगाद गुरुये सतगुरु बापे फिटके से फिटे गुरु बापे फिटके से फिटे गुरु अंगद की ते कुआरे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकिया गुर चौथी पीढ़ी टिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहां निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहां लहया अभिमान।

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बड अगम अथाह।

कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़ियां दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कवियां विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया ओदे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द